राम रीम तुम दुर्जे बजरू राम रीम तुम बालेश्वरी राम तुम कालिका देवी शाम शाम शुभम गुरु भूम भूम भूमकारिणी शिवनयी जम जम जम जम्बनादिनी राम रीम तुम हरि भद्री भवानी के नमो नमः कारी सृष्टि रूपाय रिंकारी प्रतिभागा क्लिंकारी कामरूपिणी चामुंडा चंडधाति च यहिकारि वरदायिनी नित्यं चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी धाम रीं तुं दुर्जटे बद्रीं भवानी तुं बालेश्वरी राम तुं कालिका देवी शाम